सनातनची कपादवा शंख चक्र गदा पद्मांकित पादवा अंकुश कुलिज ध्वजा रेखांकित पादवा शंख चक्र गदा पद्मांकित पादवा अंकुश कुलिज ध्वजा रेखांकित पादवा पंकजासन हृदय दल्लि नलिव पादवा संकटारण वेंकटेशन दिव्य पादवा पंकजासन हृदय दल्लि नलिव पादवा संकटारण वेंकटेशन दिव्य पादवा इको नोडे रंगनाथ।

0: आज पीछे हो गया है
1: क्या
0: चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार आज पीछे हो गया हमको आज पीछे हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो।
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज पति तो हो गए आंखों, आज पति तो हो गए आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: खेले पहली ही बाजी न गए हम, पहली ही बाजी न गए हम।
1: क्या
0: हार हार हार ओ राजा, हार हार हार ओ राजा, हार हार हार। आज किसी पे हो गई आंखें, आज किसी पे हो गई आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। डीरा टा डीरा।

राजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बितकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला का दिला का।

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला चजो यो चजो चू दिला दिला चजो दिला चजो चू दिला दिला अट दिला अट दिला अट दिला अट

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बित की जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा तडा, डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा तडा, डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दिलाता

0: होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
0: इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए।
1: दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला द

से आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दी

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

नबाज आई बेदाद करते करते चौखट पे आ गया हूँ फरियाद करते करते पर्दा जरा हटा।

बंदा मगर तुझ सा न पाया कोई। हाँ, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे।

0: जो होगा कल ही देखा जाएगा। पर जीने वालों ले लो जीने का मजा।
1: कल जो होगा कल ही देखा जाएगा। जीने वालों ले लो जीने।

ये ला जाल पहला लोगो ये नगरी एन बोल उत्तर ढोल धमाधम बाजे भीतर पूनम बोल ये चावल तेल की रखता है एक यहाँ पर बोल घोड़ा और का धोता भैया एक यहाँ पर बोल।

0: हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या करे

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या करें

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम।